पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेव है जो सेव तुद जी जन नानक तिन कुरबाना। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर त्याया जी तन तूटी जमकी फासी। जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तन का पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप सुमासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

जपें बेअंता। तेरे अनेक तेरे अनेक पढ़ हैं बहुसिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जीव डबर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नहीं चल करता सोई।

जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख बखाने। जिन हर सेव्या जन सुख पाया, सहजे ही हर नाम सुमाया।

मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलया राव। ना हो जति सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तन की शरणा, जिन तू नाही विसरया। आस्था महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया।

राहु जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कव्यो वाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। ताब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो ब्रत पारा हमरे दोष सब तुम काव हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो।

कहो आज संगरे आए पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाढ़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सतर हमारे मारी है।

प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमहोपुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपधरा काल पाए सब जीव अवधरा काल पाए कर विष्णु।

सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव आदि जुगाद स्वरूप सुयम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उभार या सिख संगरो दोष जेते उठवत उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दोष्ट दुखत वै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके कालू निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट रेष्ट टरें तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तन कमो हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास्व सके न कोई

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से ती मन वजियां बधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बणाइया शब्दों तंगा वो हरि केरा मन जिने बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया।

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
1: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3875.

तीरथ करन सरल मन मोहन जोहन पाप बदारन को हर तारन तरन समरथ सबै बिद कुलह समूह उदारन सौ चित चेत अचेत जान सत संगत परम अंधेर मोहयो कत तौ मूरत करी चसा पल सिमरन राम नाम रतना संग लो होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहां दुख पौ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यो रौ रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह सवार धरी खान पान सोदे सुख पुंचत संकट काट बिपत हरी मात पिता भाई अर बंधप बूजन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रतनित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक करी कर गह लेहो कृपाल कृपा निद नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्बत करतब करत महा मुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप तां स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल।

आया मत कहां लहु गारहु, सत्तर ना पत्तर ना चौर ना चावर, बहती जात हृदय ना बिचारहु, रथ ना असव ना गज सिंघासन, सिन मह त्यागत नांग सधारहु, सूर ना वीर ना मीर ना खानम, संग ना को दृष्ट निहारहु, कोट ना ओट ना कोस ना छोटा, करत विकार दू कर चारहु, मित्र ना पुत्र कलत्तर साजन साख, उल्टत जात बिरख की चारहु, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन, छिन छिन सिमरहु अगम अपारहु, श्री पतनाथ सरन नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारहु, प्राण मान दान मग जोहन, हीत चीत दे ले ले पारी, साजन सैन मीत सुत पाई, ताहू तेले रखी निरारी, तावन पावन कूर कमावन, एह बिद करत औद तन जारी, कर्म धर्म संयम सोच नेमा, चंचल संग सगल बिदहारी, पास पंखी बिरख अस्थावर, बहु बिद जोन प्रम्यो अत पारी, हिन पल चसा नाम नहीं सिमर्यो, दीना नाथ प्राण पत सारी, खान पान मीठ रस भोजन, अंत की बार होत कत खारी, नानक संत चरण संग उदरे, होर माया मगन चले सब डारी, ब्रह्मादिक शिव संत मुनीसर, रसक रसक ठाकुर गुण गावत, इंदर मुनिंदर खोजते गोरख, तरन गगन आवत फुन तावत।

भाग कान को जाचे है मुख दंत रसन सगल कास जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परयू है एता गब आकाश ना मावत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परयू है दह दिस ताई महा बिखे।

दान मृत मरियो है। अनक जोन संकट नरक पुंचत, शासन दुख गर्त गरियो है। प्रेम भगत उदर है से नानक, कर कृपा संत आप करियो है। गुण समूह फल सगल मनोरथ, पूरन होई आस हमारी। औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर, सर्व रोग खंडन गुणकारी। काम क्रोध मद मत सर तृष्णा, बिनस जाहे हर नाम उचारी। स्नान दान तापन सोच किरिया, चरण कमल हृदय प्रभ धारी। साजन मीत सखा हर बंदप, जी तान प्रभ प्राण अधारी। ओत गही स्वा

प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंधियो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरियो ना जात रहियो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चल है हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोह सिदे हर नाम खग उदम कर लागे बहु पांती विच रहे अनक शास्त्र बहु खटुआ भस्म लगाए तीर्थ बहु भ्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाट है कर थटुआ सवैये महले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार।

तुरत निवारण शब्द सरे गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म

आद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावह सनकाद साध सिद्धादिक मुन जन गावह अशन चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावै जम दगन परसरमेसर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावै सर्वात्म जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह गुण बरन चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंत गुना गावह गुण शेष सहस जिह बारात आद अंत लिव लाग तुना गावह गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निर्वैर रिदंतर श्रेष्ठ सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावह सनकाद आद जनकाद जुगह लग धन धन गुर धन जन्म सकियत भलो जग पाताल पुरी जयकार धुन कब

सत युग तै मान्यो छलियो बल बावन पायो त्रेतै तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मरार कंस किरतारत कियो उग्र सैन कौराज अपै भगत है जन दियो कल युग प्रमाण नानक गोर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फरमायो गुण गावे रविदास भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बेन गुण रवे।

गौतम रेख जस गायो कब काल सुजस नानक गुर नित नवतन जग छायो गुण गाव है पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवै सदा जोगी जत

जिन हुकम सब सृष्ट सवारिया ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझाणियो जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माणियो गुण गावह नवनाथ धन गुर साच समायु मां धाता गुण रवै जेन चक्रवै कहायु गुण गावै बल राऊ सपत पताल बसंतौ।

सोई पुरख धन करता कारण करतार करण समर्थु सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथु ता धरियो मस्तक हथ सहज अम्यो बुठो सज सुर नर गण मुन बोहे आगाज मारियो कंटक काल गर्ज धावत लियो बर्ज पंच भूत एक घर राख ले समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रथ उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर पर सुमरार जा की दृष्ट अमृत धार कालुख खन उतार।

निर्भार सत संगत सहज सार जागी ले गुर विचार निमरी भूत सदीव परम प्यार कहो कीर्त कल।

कल मल त्रसन सब रंग सहज कल उच्च रह जस जंपो लहणी रसन नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सो है रंग रतो नाम सिउ कल नाम सुर नरह बो है नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाव सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल राम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निज दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेवी है एहन सहज सुपाई।

भगत उच्चरै अमर गुर इत रंग रातौ मस्तक निशान सचो कर्म काल जोड़ कर त्यायु परसे हो गुरु सतगुर तिलक सर्ब इच तिन पायु चरण ता पर सके अत चरण गुर अमल पवल रै।

लोचन चित भगत कंबीर है जानी रुख मांगद करतूत राम जंप हो नित पाई अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णा तजी सो मत जल जानी जुगत गुरु अमरदास निज भगत है

परसीय सिद्ध साधक असास्त है। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुक है। गुरु अमरदास परसीय अपौ लबे गौ चुक है। एक बिन दुगण जो तौर है जा समंतर मान वह लह। जाल पाप दार्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिले। सच नाम करतार सो दृढ़ नानक संग रहियो। ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहियो। तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कमण बखाणो। जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो। बोहिथो विधाता निर्मयो सब संगत कुल उदरन। गुर अमरदास।

गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावै सच सच जानी है एक चित्त है लिव लावै काम क्रोध वस करै पवन उडंत ना था।

हर संग राते दुख न लगे, हर संग रात अनदिन जागे, हर संग रात सहज कर वसे, हर संग राते ब्रह्म पौन से, हर संग राते मत उत्तम।

पान मथुरा मूर्त सदा फिर लाए चत स्थल मुख रहो। तन श्री गुरु अर्जुन देव जी, तन श्री गुरु अर्जुन देव जी, तन श्री गुरु, तन श्री गुरु अर्जुन देव जी, तन श्री गुरु अर्जुन देव जी, तन श्री गुरु अर्जुन देव जी, तन श्री गुरु अर्जुन

पान मथुरा मूर्त सदा फिर लाए चित सन्मुख रहो कलयुग जहाज अर्जन गुरु कलयुग जहाज कलयुग जहाज अर्जन गुरु।

Sadler sister, nothing but better. Sadler sister, Kaljuk jahat, Arjan guru. Kaljuk jahat. सिमरन सोई पुरख अचल अविनाशी जिस सिमरत दुर्मत मल नासी सतगुर चरण कवल रिद तारम सतगुर चरण कवल रिद तारम गुर अर्जन तुन सहज विचार गुरु रामदास का

जपन जप लोच लोचानी। सतगुर सेव खत हर बांधो मत जानो आज के काली, हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली।

नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी संत तव प्रसाद। अरूप है अनूप है जुआ पुआ लेखा पेखा नाम है काम देहा पेहा जीता पीता धर्मानंद अनद्र वर्ग सर्ग नीला नादा जया जादा जन्म वर्ण भूता वर्ण अगांजा पांजा जूझा जांजा मीघर भीघा दांधा बांधा नरभूजा सूझा काल जाल अल्लाह जाय अनंत महंत लीघा नरसरीघा नरदम्ब समय अगम है जम भूत है सूत है अलोक है शोक है कर्म परम है अजीत है पीत है अपार गाय मान दान एक अपर एक भुजंग प्रयात शामल। नमो सर्व मान्य समाज तीन दान्य नमो देव देव अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे नंगी अनाथी नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मन माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो दान दाने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बद बादे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समाधि भगूते कलांक बिनाने कलंक स्वरूपे नमो राजेशभ्रंग परम रूपे नमो योग योगेशभ्रंग परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरंग परम हृदय नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्र माणी नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता बेखीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते नमो नृत नारायणे गुरु नृत नारायणे गुरुर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवेश धर्मे नमो रोगार्ता नमो राग रूपे नमो शाह नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मन माने नमो रूप रोगे नमो संशनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जांत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे रूपे समाज तुलने वासी सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध वृद्ध करता अद उर्दर्दंग गंगो घरता पारंग परम परमेश्वरंग प्रोज पालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग नशेदीय भेदीय नामंग कामंग समस्तोपराजी समस्तास्ततामंग तेरा जोर चाचरी शंभ जले हैं दले हैं पीता वे हैं प्रभु आजुआ देस पेश है भुजंग प्रयात शंभ अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्त दीन दाने नमाज तुंग नरनाथे नमाज तुंग परमाथे नमाज तुंग गंजे नमाज तुंग पंजे नमाज तुंग काले नमाज तुंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेषे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साजाय नमो मा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व भीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जांत्रंग नमो सर्वदृष्टंग नमो सर्वकृष्टंग नमो सर्वरंगे दर्भंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे पिजे समासंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे गो कर्मंग वर्णासी सदा सर्वदा आर्य दिशदंग निवासी जरपट छंद प्रसाद। अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांत दव प्रसाद। आद रूपन आद मूर्त जगन प्रख पार सर्वमान धर्मान देव बेवाद उदारु सर्व बालक सर्व कालक सर्व गोपन काल चतुर तत्र विराज ही अवधूत रूप प्रसाद। नाम ठावना जा

14 के बिखरे जग जापी जे जाप आदि देव नाद मूर्त सप सब जय थाप परम रूप वनीत मूर्त पूर्ण पुरुष अपार सर्व विश्व रचियो स्वयं पवगण पंजनार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुष देश धर्म धाम सु परम रहत भूतल अखपेश अंग रागन रंग जाग जात पात न नाम गर्भ गंजन दोष पंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीका नौसद एक पुरख दूत गर्भ गंजन सर्व गंजन आदि रूप सूत अंगहीन भंग नातम एक पुरख पार सर्व सुरचय स्वयं पवकर्ण भंजन हार।

अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनोबिसारी। कहे नानक मन मेरे सदा रहो वरनाले, साचे साहिबा क्या नहीं कर दे रहे, करदा दे रहे सब कुछ है जिस देही रूपावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया बाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं कर दे रहे, साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दियां बड़ियाइया। कहे नानक सुनो संत शब्द रो प्यारू, साचा नाम मेरा आधारू। वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जन कहो से नाम हर कह लागे। कहे नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाजे, साची लिवै बन देन माणी लिवै बाजो। क्या करे बेचारिया तुद वास समरथ कोय नाही, कृपा कर बनवारिया इस ना होर थाउ नाही शब्द लाग सवारिया। कहे नानक लवै बाजू क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया। कर कृपा कलवे कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदर जन का मोह टुटा दिन का सब सच सवारिया। कहे नानक आनंद आनंद गुरु ते जानिया।

0: सचे सब तां सचे सब जो सची तेरी सिर्फ सची साला सची तेरी कुदरत सचे पाशा नानक सच ध्यान सच जो मर्ज में सो कट निकट
1: बड़ी विजय सच ने आओ बड़ी विजय ने चुखाऊ बड़ी विजय जाने अलाओ
0: वड़ी वड़ियाई बुझे सबा वड़ी वड़ियाई जा पुछना दात वड़ी वड़ियाई जा आपे आप नानक कारण कथनी जाए सीता करना सर्ब रजाए
1: अला दूजा यो जो सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विश्वास एक ना हुक्म समायले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना भाने कड़ले एक ना माया विश्वास इस भी आँख में जाप्री

श्री वाहेगुरु पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुरु पाया ए जीव बोते जन्म भरनिया ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सब आया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो

बोलना जी सिवाय गुरु पौड़ी ना तेरा नंकार है ना लये नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आ गवाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनो नित सदाइए जे गरवाना पर हरे जरवेश करेंदी आइए को रह न भरिए पाइए।

बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर विच आप रखियम कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचों मो चुकाया। उत्तम ए विचार है जिन सच्चे सों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

हमें माया हमें छाया हमें कर कर जनते पाया हमें बुझे तांदर तुझे ज्ञान में होना कत कत लुझे नानक हुक्मी लिखी।

दूसरी वाग्रह पड़ी सत्या सामे तू जिन सत्य सत्यता जिस तुम दे मिले सच न तुम्हें सत कुमार सदगुरु मिले सत पाया

0: मूरख पंडित हिकमत जब संजय करे प्यार गर्मी गर्म करेगा वावे मुंगे मोह द्वार जति सदावे जुक्त न जाने छठ बहे दरबार सब को पूरा पे हो घट न कोई आखे पद परवाना पीछे पाइए तंगान को ले आ जाते
1: मार का सिद्धे के सोए सब निखल मारिया जो मगर सो अगे जात न जोड़े।

बोलना जी श्री वाहेगुरु पड़ी पड़िया हो गुनेगार तो मूसा न मारिये जी हाँ खाले खालना तेरे हो ना पचारिये ऐसी कला न खेडिये जिधर गए गया हारिये पढ़िया विचार अगे विचारिये मुचले सो अगे मारिये।

0: जोत चली चंद्रावल काम कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया बिंद्रा बन में रंग किया
1: बल में वेद अथर बन हुआ नौ खुदाई अलो भया नील बस्तर ले कपड़े पहरे।

0: संतोष सूत जगनि सतवतीन तेजन उगी का हित पांडे घतीन नायो टूटे ना मल लगे नायो जल न जा संसु मानस नानिका जुगल चले पाओ
1: चौपड़ मुलन आया बचोके पाया सिखा कन चढ़ाइया

बोलना जी श्री वाहेगुरु पौड़ी सतगुरु वड्डा करसा लाइया जिस वड्डिया वड्याईया ते मेले तनद्रियाईया जांच सबाणा तमन वसाईया कर हुकम मस्तक हाथ तारे विचो मार कडिया बुरियाईया ते तुठे नौनित पाईया ते तुठे

बोलना जी श्री वाहेगुरु पौड़ी सबको आखे अपना जिस नाई सोचन कडिये कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडिये जरना नाई अत जगता का इत गर्भ हंडिये मंदा।

दोनों ही श्री वाहेगुरु पड़ी जिथे है सुख पाइए तो साहेब सदा संभालिए जितूता पाइए अपना सा खाल बुरी क्यों खाली है मंदा मुन नकी कई बेलंगी नगर में खाली है जो साहब नहारी है तेरे हाथा सा डाली है पिछला है ऊपर खाली है पिछला है।

पड़ी नानक अंतना जापनी हरता के पारावार आप रहे शक्ति फिर आप रहे मार इतना गली जंजीरिया एक पूरी तरह

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास विषम परे कै, नाम जपत अगणत अनेकै। वेद पुराण सिमरत सुधाखर, तीने राम नाम एक अखर। तिनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनी ना आवै। कांखी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भक्त जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अंदर जागै। प्रभ कै सिमरन भव ना व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जपता पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन होए सो भला, प्रभ कै सिमरन सफल फला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक तां कै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब के सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद महे समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से धनवंत, प्रभ को सिमरै से पतवंत। प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरै।

प्रभु कौ सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु कौ सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमरै तिन सुख बिहावै, प्रभु कौ सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु कौ सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु कौ सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कौ ना चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहि समानी, प्रभु कै सिमरन निहचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभ सिमरन का अंत ना पार, सिमरै से जन जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन का भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बे दियो पाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महापयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले, जय मुस्तल हो वै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोड़ी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै, जेह मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा धियाइऐ, नानक गुरमुख परम गत पाइऐ, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जब तै पार पराही, अनक बिगन जाए आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम, हौ मैला मल कबो न धोवै, हर का नाम कोट पाप होवै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइय साध कै संग, जेह मार्ग के गने जाए ना कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा, जेह पैंड महंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा

जहाँ त्रिखा मंत्र गया करख तै नानक हर हर अमृत बरख संत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत बिबेक हर का नाम जन कौ मुक्त जुगत हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जबत कौ परै ना भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जबत कछ नाहे बेयोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै

कै ओठ सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हरस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रकट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे, पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग बड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए, सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेठे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान, योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मध्ये फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीवै, महा उदास्त पीतर थीवै, अगन माहे होमत पुराण, कनक अश्व है वर पूम दान, न्यौली कर्म करे बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन, निमख कर शरीर कटावै, तौपी होमे मैल न जावै, हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे, मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन से हुटै, सोच करे दिन से अर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन पे कभू ना बिख्या करे, जल धोवे बहु दे अनीत, शुद्ध कहाँ होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच, बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै, देख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाप दरगै नहीं सिजै, छूट सनाही उपयाल, मोहे व्यापै माया जाल, अवर कर तूत सगली जमडानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहे सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगै, साजना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम रे सदगावै, जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए मैं शोरै, जे को जन्म मरण ते डरै, साध जना की सरनी परै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस कहो जो जाने नीचा, सो गनिया सब ते ऊंचा, जहाँ का मन होए सगल की रीना, हर हर नाम तन कट कट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल श्रेष्ठ साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निरतन कहो तन तेरो नाओ, निथामे कहो नाओ तेरा थाओ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा को देव दान, करण करावन हाँ।

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो कूल नहार नानक राखन हारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रचै साथ छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो असर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन ले प्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए अंध कु मैं पदुक जकराल नानक काढ़ लेहो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्द नाहे कश करै छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अगन बाहर तन स्वा गल पाथर कैसे तरै था जा कै अंतर बसै प्रभ आप नानक तेजा सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै लेहो और निभावै कहाँ बुजारत बूझै डोरा निष्कैया तो समझै पूरा कहाँ बिसन पद गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तो ऊहा उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सुआवै ना चीत जो बैराई तासों प्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अनंत खेल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत काल नया वै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक देन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए नानक कहू ना सी जई बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावै एक बस्त कारण बिखूट गवावै एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा कहो कहां करे जिस ठाकर स्यो नाही चारा ता कहो की जय सद नमस्कारा जा कै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगंत साहो अपनी देरास खात पीत बरतै अंध उलास अपनी अमान कश बाहुर साहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहुर उसका विश्वास न होवै जिसकी बस्त तिस आगे रखै प्रभ की आज्ञा मन मथ है उससे चौगुन करै निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक पात माया के हेत सर पर होवत जानिया नेत बिरख की छाया स्यों रंग लावै ओ बिनसै ओ मन पछतावै जो दिसै सो चल नहार लपट रहे होता है आंधे अंधार बटाऊ स्यो जो लावै नेह ताको हाथ ना आवै के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया मिथ्या हों मैं ममता माया मिथ्या राजोवन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता
मिथ्या त्रोह मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर दर्ब कोहरै। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रेरूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कौ तावै, मिथ्या मन पर लोभ लोभ हवै। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल देह नानक हर हर नाम लय। बिरथी सागत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम। तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ। रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार

आवत जावत जन्म मरै, जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपै मानै। आपै आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा। उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कह जानै आत्म की रहत। जिस पावै तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी। सलोक काम

गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद शक्ति अमृत खाहे सागर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस कौ सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरौ तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्याग कत अवर लोभावै जे प्रसाद सुख से सोई जै मन आठ पहर ताका जस गावी जै जे प्रसाद तुझ सब को मन मुखता को जस रसन बखाना जे प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ते आए केवल पाल ब्रह्म

जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभता कह जे प्रसाद तुझको ना पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु ऊचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानकता की भगत करे है जे प्रसाद या भूखन पहरीजै मन ते सिमरत क्यों वाल सकीजै जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना जिन तेरी

बहुदान मने अष्टहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू चार बिहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमर उसका अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेख है बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फलै जे प्रसाद परमगत पावै जे प्रसाद सुख सहज समावै ऐसा प्रभ त्याग और कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कहो जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जब जपै जब सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते माति उत्तम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हू लया जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनकै कछु ना हाथ सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो मुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुखी उजल होत साध संग मर सगली खोत साध कै संग मिटै अवमान साध कै संग प्रगटै सुभियान साध कै संग बुझै प्रभनेरा साध संग सब होत अंधेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रमहे समानी साध कै संग गोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहूं तावै साध संग असित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग के सो नहीं बैर साध कै संग न बींदा पैर साध कै संग ना ही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग ना ही हौताप साध कै संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहूं तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बसता गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थानी ऊचै साधु कै संग मैल पहुँचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै साधु कै संग सो तन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कशकाल दर्शन भेड़त होत निहाल साध कै संग कलुख तहरै साध कै संग नरक प्रहरै साध कै संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछरत हर मेला
ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਤ ਬਸੈ, ਨਾਨਕ ਉਧਰੈ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਰੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਲਗੈ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘੜਕੜ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਯੋਗ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचे ऊंची, साध की शोभा मूचे मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रपेद न पाई। सलोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्प कौ शोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, ज्यो बसदा को खुद है को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नारक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला, जैसे महल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सफल भला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी

बीच में बसे कबू सोग हर खरंग कबू सोग हर खरंग हसे कबू निंद चिंद व्यवहार कबू ऊब आकाश पयाल कबू बेटा ब्रह्म विचार नानक्या मिलावनहार कबू नृत करे बहुपात कबू सोए रह दिन रात कबू महाक्रोध विकराल कबू सर्व की होत रवाल कबू होए बह बड़ राजा कबू पिखारी नीच का साजा।

कभू होए पंडित करे बखियान, कभू मोन धारी लावे ध्यान, कभू तब तीर्थ स्नान, कभू सिख साध मो ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमै परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावै, जो प्रभु पावै तिवै नचावै, जो तिस पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संगत हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मानता नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राजा मान, सो नरक पाती होवत समान, जो जन मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आप स्कौ

आप उपदेश है समझे आप आपे रचिया सबके साथ आप तीनों अपन विस्तार सब कश उसका ओह करने हार उससे पिन कहो किश होए थान थनंतर कैसोए अपने चल तो आप करने हार कौत करे रंग या पार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कह ना जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरप्रसाद किने वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदरिया पारिया नूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन पर सो जन उधर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन यार जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सुबातहीन संत के हते को रखै ना कोए संत कै दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत कै दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए पी गत पाहे संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिंट किन्ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतेहीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक सर्व रोग संत के निंदक सदा बिजोग संत की निंदा दोख मैं दोख नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को डान लागै संत के दुखी तो सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरै संत

संत के दुखी की जड़ किस ना है, अपन बीजा पे ही खाहे। संत के दुखी को अवर ना रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दुखी ओ बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पाप की इंदन नहीं त्रापे। संत का दुखी छुटे अकेला, ज्यो बुआर तिल खेत माहे दोहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंद का तुर ही पया, नानक जो तिस पावे सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी तो दरगह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है।

आप मानो कह किस नाही हाथ तिसका हुक्म भूष खोए तिसका नाम रा कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन ना लागे कोए उसत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो उसका सुहेला कर ले जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सा संग बिन सह सब संग।

प्रभ के सेवक सगले उदारण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे में लय कृपाल, गुर का सब जो पै निहाल, उनकी सेवा सोई लग, जिसनो कृपा करै बड़ भाग, नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान, जो किछ करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाए होवै सो होए, करणै हर पछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा साव तैसा दृष्टाना, जिसते उपजे तिसमहि समाए, ओए सुख निदान उन्हु बने आए, आप स्कौ आप दीनो मानो।

तज अब मान लेहो मन मोल राम नाम हृदय में तोल लाद खेप संतै संचाल अवर्त आग बिखिया जंजाल तन तन कह सब कोए मुख उजल हर दरगह सोए एहो वापार विरला वापार है नानक ता कह सदबलिहार है चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तूर करो इशनान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक बिघन ते साधु रख है हर गुण गाए अमृत रस चाख है ओट गही संतै दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृत तो जीवा।

जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मन की तू प्रीत आग, तिससे परे नाही किस कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहिर सो जाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बसंद। साध तेरे की चरनी पाओ, नानक कह मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन परन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जाने होर। आनंद रूप मंगल सब जा कै, सर्व थोक सुनिए करता कै। राज मैं राज, योग मैं जोगी, तप मैं तपीसर, ग्रस्त मैं भोगी। त्याए त्याए भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किरंत ना पाया। जा की लीला की मित नाहे, सगल देवहारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे।

अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर्यो पाव सब मीत बिसारो चरण कमल रिद मैं उतारो करण कारण सो प्रव समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ एहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्म

अन क्यों पावी रोग ना जाए, रोग मिटाय हर अब खदलाए। सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान। मन पर बोध

नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास चित कर जाए बस अबनासी कहो नानक काटी जम फांसी तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा गमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव इं रतन जन्म का होए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अन क्यों पाव ना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग ना चालस तेरे तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुत मीत पुटां बेर बंता इनते कहो तुम कमन सनाथा राज रंग माया विस्थार इनते कहो कमन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंफ झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना ना बिसार नानक पछताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कह तो रहत गत पावो सार पूत सत हर को नाओ सह सवाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उत्तर समैल बिन सजाए हो मैं बिख फैल होहे अचिंत बस है सुख नाल सास ब्रा सार नाम समाल छाड़ सियानप सगली मना सार संग पावै सजतना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दर गै जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाकै मस्तक लेख एको जप एको सालाहे एक समर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर्ण रहे प्रव्याप अनक विस्तार एक ते पे एक आराध प्राश्त गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जा

एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय अपने आप आप पियारा तै कौन कथे कौन सुनने हारा। बहु बेअंत ऊंचे उच्चा नानक आप सको आपै पहुंचा। जय आप रचियो।

जिस पावै तिसे अपनाए लावै, जिस पावै तिस खेल खिलावै। बेशुमार असह अगंत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार, नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार। अष्टपदी आप कथा आप सुनने हार, आप एक आप विस्तार। जात पावै ता सृष्टि उपाए, अपने पाने ले समाए। तुम ते पिन नहीं किस होए, अपन सूत सब जगत परोए। जा को प्रभु जीव आप बुझाए, सच नाम सोई जन पाए। सो समदर्शी तत् का बेता, नानक सर्व श्रेष्ठ का जेता। जी जंतर सब ताके हाथ, दीन दयाल अनाथ को नाथ। जिस राख है तिस कोय ना मारे, सो मुआ जिस मनो बिसारे। तिस सजवर कहाँ को जाए, सब सिर एक निरंजन राय। जी की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो।

फरमा एक बाणी प्रभु की सबको बोले आप डोल न कब हूँ डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहे स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तन में एहो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना का हृदय सब धर्म संत जना सुने सो बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभ जाने अंतर बसे बाहर पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी नह जाए जिस पावै तसलै मिलाए कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आपे आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्वपूतिया वरतारा सर्वनैन आप पेखनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी कीनी माया सबके मद अलिप्तो रह जो कुछ कहना सो आपे कह आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा पावे ता ले समाए इसते होए सो नाही बुरा ओर कहो किने कष करा आप भला करतूत अपनी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत अपन संग्राच ता की गत मित कहीं ना जाए दूसर होए ता सोजी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने ते सदा सुख होए आप मिलाए लहे प्रभ सोए ओह धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिसरदै भगवंत तन तन तन जन आया जिस प्रसाद सब जग तराया जन आवन का एह सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन कहो।

अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेठ सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आसा नित त्यागो त्रंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर करो हर तन के पर लिहो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पंच परमानंद नरक निवारो उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दा मुद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफल का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रव्याम मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुनोसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निधि खेप हमारी प्रभ की उस्त करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै अमन जान हर तन खाड़ चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल से उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदृष्टि एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै

सिमरत शास्त्र वेद बखानी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै। जाकै मस्तक कर्म प्रभु पाए, साध शरण नानक।

0: जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ देह तत्काल उदारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से पै परम, साध नाम निर्मल ताके कर्म, सब दे ऊच ताकी शोभा बनी, नानक एह गुण नाम सुख मनी।
1: केवू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नू होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
2: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3074 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3075।
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

भाई मोहन सिंह जी और प्यारे भाई साहिब सिंह जी और इन्हों को इलावा होर गुरु के सिंह शहादत का जाम पी चुके ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने पुत्रां दी शहादत अपने नेत्रां नाल देखी। अकाल दे छुत ने उस अकाल दी रजा उस दा पाणा ते उस दे शुकराने नू अपने दिल तो स्वीकार कीता। आओ हजूर चमकौर दी गढ़ी तो माछीवाड़े पहुंचदे ने इत्थों दे कुछ इतिहासक प्रसंग ने जो आप संगत नाल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा नाल अज सांझे कर सका। अपनी सुरत नूं हजूर दे पावन पवित्र चरणा विच जोड़न दा यतन करिए, क्योंकि सुरत नाल जदों असी सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण हजूर दे उन्हां इतिहासक अस्थानां ते पहुंचने हां ते साडे अंदर नूं सकून ते गुरु जी दी अंग संगता भासदी है। विचार दी प्रारंभता तो पहलां गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह चमकौर की गढ़ी विच भाई साहब भाई संगत सिंह जी नूं अपनी कलगी अपनी पोशाक बख्श के तीन सिंह अपने नाल लए।

0: सकेंगा, महाराज जो हुक्म होवे सो प्रवान है, जो हुक्म होवे सोई प्रवान है, जो हुक्म होवे महाराज सोई प्रवान है। चंगा फिर बालक्या, वस्त्र बालक्या वाली पाला है, बोलो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: वस्त्र भी बालक्या वाली पाला जे बालका बनया है। सतवचन महाराज, अच्छा फिर कल नू लोका ने भी मुंह काला करना, हुणे ही कर लै, बोलो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: लोका वलो बाबा जी ने उदो ही तवे ते सात संग पा के तेल मुक, बोलो सतनाम। हुण महाराज देखो पहले दिन दा ही परचा, बोलो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: ये पहले दिन दा ही परचा। अच्छा भी बालक्या, फिर जिथे विआह होया सी उथो मंग के लैके आ, बोलो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: जिथे विआह होया सी उथो ही मंग के लैके आ, बाबा जस्सा सिंह ने ठीकरा चुकया उथे ही मंगण वास्ते तुर पे, बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: कौन कर सक सचमुच

हरन हर नाम की हर हर मुख पाया। भगत लक्षण हर बिरद है हर लाज रखाया। तेरिया बड़िया सिफतां सुनिया तू भगत लक्षण है, पर मैं तैनु दीन दयाल आख के बेनती कर रही हूं। तू भगत लक्षण है, भगतां दी लाज तो रखदा ही आया है, पर मैं तैनु दीन दयाल आख के संबोधन कर बेनती रहमत मंगना।

लगातार सिस्टम चल रही, तू सारे में बस रही, अपना कंट्रोल कर रही। हुण इत्थे मसला यह आ गया कि वह कंट्रोल करने वाली शक्ति का रूप की है। बार बार नाम की गल क्यों चेता कराई गई? यह गल वक्री है कि मनुख ने नाम का लफज तो चेता कर लिया, नाम की परिभाषा न समझ। नतीजा यह निकलिया कि मनुख ने नाम के वख वख रूप बना लिया, वख वख किस्म बना लिया, तो अपने अपने ढंग की किस्म परिभाषा बयान कर लग पाया नाम की। गुरु ऐसे समझाना चाहते जिन्हों मैं रब्बी शक्ति आख रहा, जिहड़ी सारे ब्रह्मांड नूं कंट्रोल कर रही है, जिहड़ी सारियां दे विच वस रही है, जिहदे हुक्म बिना पत्ता नहीं झुलदा, वो आखिर हुक्म की है?

अष्टमी गीत गोविंद जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी क्योंकि अष्टमी दे क्षेत्र दे दिहाड़े जन्म मनदे ने। गुरु जी साहब कहंदे ने कि सारियां थित्तां छड छड के गोविंद रब जिहड़ा है वो अष्टमी थित्त नूं उहने जन्म लिया, बाकी थित्तां विच वो रब नहीं, वो परमात्मा नहीं। जिस तारीख नूं जम्मिया, जिस युग विच पैदा होया, बस उस युग विच नहीं, वो तो सिर्फ द्वापर विच पैदा होया। त्रेते विच उहदा संबंध ही कोई नहीं, ते त्रेते विच रब कहिंदा हर युग युग तो रब वखरा मनेगा। तो गुरु आख रहे मैं उस रब की गल करना जो आदि सच है, जुगाद सच है। तू नहीं आख सकता कि किसी त्रेते विच पैदा होया, तेन आखना पड़ेगा केवल द्वापर। तू नहीं आख सकता राम द्वापर विच पैदा होया, तू आखेगा केवल त्रेते विच। और गुरु ने आख्या, इसलिए मैं तेन स्पष्ट करना चाहना, जुगै जुगै के राजे की ये गावे कर अवतारी। युग युग दे समय समय दे राजे पैदा होए जिन्हां नूं अवतार करके लोगों ने गाव्या। कहन लगे ख्याल करी भगवान नहीं, क्योंकि भगवान किसे समय का मोहताज नहीं, भगवान किसे समय का कायल नहीं, उनके बंधन विच नहीं। वो तो आप सच है, जो कुछ भी नहीं सी उदों भी ऐसी, उदों भी ऐसी। कहन लगे अष्टमी तीर्थ गोविंद जन्माष्टमी, काहे रे नर करत कचायन, जन्म मरण ते रहत नारायण। वो तो जन्म मरण तो रहते, उनके जन्म की तू कोई तारीख नहीं निश्चित कर सकता, उनके जन्म का तू कोई स्थान नहीं निश्चित कर सकता, पर राम के जन्म स्थान भी तू दिन रात लग रहे। कह लगे नहीं, हर कोई भगवान नहीं आख्या जा सकता। और कैसे कौन कहानियां, उन्हां दी कहानियां बन गई, रामायण बन गई, गीता बन गई। जैसे नचे मंगते हूं नाटककार ने अपना काम शुरू कर लिया, राजधारी इकट्ठे हो गए, उन्होंने रामलीला कृष्ण लीला खेलनी शुरू कर दी। कहते नचे मंगते गिरमिट पूरे साल नचते, बाजारी बाजार में आए कंधे बाजार, जिथे इकट्ठ वेखते, जिथे बहुता काफला देखते दे, मेले लगते, जदों कभी कोई मेला लगता उत्थे बाजारी भी पहुंच जाते अपना बाजार लाने लिये। रामलीला हो रही थी, कृष्ण लीला हो रही थी, गावे राजे रानियां, राजे रानियां का भेस बना दे, बोले आल पताल, ते आल पताल जो मुंह आउंदा, जो मन में ख्याल आउंदा, वो उन्हां दी नकल करने वास्ते बोल दे। ते बनावटी नकली क्योंकि रूप बनाना होंदा है ना, इसलिए नकली गहने पा लेंगे जेडे लगते भी उन्हें लखा करोड़ों के पाए हुए राजे पाते, उन्होंने राजे की नकल करनी होंगी। हम राजधारिये को इना कीमती गहना कितों आवे, पर लखा रुपया के कीमती गहन की नकल करने वास्ते इं पाते भी इं ही दिखने, जिन्हें लख टकिया के मूंदड़े, लख टकिया के हार। गुरु आखते ने भलिया, ये तेरे राजे रानियां भी झूठे, ये तेरा आराम भी, ये तेरा कृष्ण भी भगवान नहीं अवतार है, आ जे तू गल गहने पाए हुए ने ये भी झूठे, ते विश्वास कर जिस तन से पाए हुए ने वो भी झूठे।

0: से तनु होए छार।
1: सच्चे रब की कहानी, सच्चे अकाल पुरख की कहानी तू केवल झूठ दे बेस से खड़ी कर रही है। साढ़े भी कई बाजारी बन बैठे सर, इसलिए भी आया बीच साढ़े भी कई बाजारी बन बैठे सर। उन्होंने भी रामायण के पाठ कराने के हवन जग शुरू कराते सर। पता नहीं जाते वास्ता भी वार रोज सुनते नहीं हूँ, जगत भी अंदर समझते नहीं। गुरु ने बाणी ख्याल दिता कह लगे वो भलिया सब कुछ झूठ का प्रेम का नाटक का इकट्ठा किया, क्योंकि नाटक से झूठ नहीं चले, इसलिए उनका प्रभाव कोई नहीं होता। क्योंकि फिल्म अंदर कई लोग मरते ने पर कभी तुम अफसोस करने गए उनके कहने तुम्हें पता चले नाटक। कई लोग जन्म लेंगे कि कभी वधाई देने गए हो पता नाटक, उनके असलियत नहीं ज्ञान नहीं। गुरु कहने यो कारण है इन्हों रामायण से गीता के पाठ से हवना जगह से इन रामलीला कृष्ण लीला ज्ञान कोई नहीं। हां मन परचावा जरूर वो बाजारियां, वो बाजारियां

भगवान गुरु बख्शिश करे, साडा जीवन का रस्ता गुरमत गाडी राव हो जाए, उनके विचों किसी भी छोटी मोटी किसी छोटी मोटी होर सेध वाल सानू चलन का चांस ना रहे। गुरु साडे लई गुरमत का गाडी राह बख्शिश कर रहे हैं जी। असि समझ लईए इन्होंने शब्दों नाल किना दा जा चिखा। फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद की ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए।

पाँव तो सुखमय आवश्यक सदा कुर्बान पिता गुरु विष्णु जी सिया बढ़िया कहे नाम सुनो संतो सब धरो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे घर सुबह।

कहे नानक तंसको अति घर अनहदवास धनम सुनो बड़ भाग्यो सगल मनो पूर पागन पपाया उतरे सगल सूर।

0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: दंडौत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ आगम अगोचर सच साहेब मेरा नानक बोला

0: प्यारा।
1: हाँ, एक गल उस चेत हो जाने, मूर्ख नाल बोलांगे ते अंदर विकार पैदा होंगे, गल वधेगी। पर महाराज आखते नहीं, जे बोलांगे नहीं तो विचार किवें होवेगी। इत्थे हुण ध्यान रखना है, रब दे प्यारे जिहड़े ने उन्हां नाल आपां नहीं विचार करनी, पर जिहड़े रब नाल टुटे हुए बंदे ने ना साकत, उन्हां नाल कदी विचार नहीं करनी, उन्हां नाल कदी भी वचन नहीं करना। क्योंकि जे आपां जीवन दे अंदर अगे वधना है ते फिर भले पुरशां नाल तां विचार करनी पवेगी ना, भले पुरशां नूं कुछ दसना पवेगा, कुछ सुनना पवेगा। हुण ध्यान देवियो, फसल दो तरह सुकदी है, फसल दो तरह सुकदी। एक वो फसल है जिहड़ी पानी विच खड़ी सुक गई, वो कदी हरी नहीं होवेगी, कदी भी हरी नहीं होवेगी। एक वो फसल है जिन्हों पानी नहीं मिलिया सुक गई, पर जे किते पानी मिल गया तो उसते हरे होण दी आस है। एक वो ने जिहड़े रब दीआं गल्लां भी करदे ने, रब दे नेड़े भी अपने आप नूं दसदे ने, पर असर नहीं कबूलदे। उन्हां दी हालत बिल्कुल उस फसल वर्गी है जिहड़ी पानी विच खड़ी सुक गई है। एक वो ने जिन्हां नूं कदी संगत प्राप्त नहीं होई, उन्हां विच भाई कौड़ा राक्षस है, उन्हां विच ही सज्जन ठग है, उन्हां विच ही भूमियां चोर है जिन्हां दे आपां नाम लैंदे हां। उन्हां नूं कदी भी किसी ने रब दे घर दी गल नहीं सुनाई, जिदन सुनाण वाला आ गया उस दिन जीवन दे विच पलटा आ गया। फिर ध्यान देवियो, असी आईए जरूर, गुरु की गल सुनीए जरूर, पर जिथे खड़े उथे ना खड़े रहिए, अगे भी तुरन का यत्न करिए। गुरु जो आखदा उन्हूं जीवन के अंदर मनीए भी। इसका यह भाव नहीं कि आप किसी नाल गल करनी ने, नहीं। विद्वान सज्जन आखते ने, जिहड़ा मूर्ख बंदा है उसके अगे हाथ जोड़ो, ते जिहड़ा ज्ञानी बंदा है उसके अगे अपने विचार रखो, उसके विचार सुनो। आखते ने, ज्ञानी के हम